हम लोग जीवन के ऊपर बात कर रहे थे. जीवंत रूप या जीव, जैसे कि एक जीवित मानव शरीर, जीवन के अतिरिक्त भौतिक जगत के पदार्थ, ऊर्जा, आकाश और समय से मिलकर बनता है. मृत शरीर में जीवन ऊर्जा को छोड़कर बाकी सभी तत्व होते हैं, अर्थात भौतिक पदार्थ, ऊर्जा, आकाश और समय. जीवित शरीर में जब तक जीवन ऊर्जा थी, उसने जीव को सुव्यवस्थित एवं संगठित किया और फिर मृत्यु के बाद जीव को त्याग दिया. इस प्रक्रिया को हम गर्भधारण से लेकर जन्म, विकास, क्षय और मृत्यु तक एक चक्र के रूप में जानते हैं. यद्यपि इन प्रश्नों के उत्तर हैं कि जीवन ऊर्जा शरीर छोड़कर कहाँ जाती है और क्या करती है, लेकिन अभी हमें इस बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है. एक सप्राण जीव के लिए महत्वपूर्ण है कि वह वृहद जीवन के प्रयासों का साथ देते हुए जीवन को बनाए रखने की चेष्टा में लगा है, और ऐसा करने के लिए जरूरी है कि वह भौतिक जगत पर विजय प्राप्त करने में सफल हो. स्पष्ट रूप से कहा जाए तो एक जीव को बनाने के लिए जीवन को सबसे पहले पर्याप्त पदार्थ और

0: ऊर्जा एकत्रित करनी चाहिए और फिर जीव को दूसरे मैत्रीपूर्ण एवं सहयोगी जीवों के साथ जुड़ जाना चाहिए तथा अपने भरण पोषण के लिए रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था करने हेतु अतिरिक्त पदार्थ और ऊर्जा जुटाते रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त जीवित रहने के लिए उसे मित्रों, रोटी कपड़ा और मकान की जरूरतों से परे दो विशेष कार्य अवश्य करने चाहिए जो मूल रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन को आनंद प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, जीवन को पीड़ा से बचना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से डॉक्टर एलरॉन हर्बर्ट ने अपने इस पुस्तक में अपने जो विचार हैं उनको शेयर किया है और इन्हीं विचारों के साथ हम अपने आज के इस प्रोग्राम में जो हम जगजीत जी के साथ हम लोग बातचीत कर रहे थे हॉरोस्कोप्स के ऊपर, तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना जो आज का हमारे प्रोग्राम में जो दूसरा हॉरोस्कोप है कौन सा पढ़ना चाहेंगे।
1: जी, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ये है 2 अक्टूबर 1993 और इनका जो क्वेश्चन है ये मैरिज के विषय में है, मैरिज योग के विषय में है। तो सबसे पहले इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के मुताबिक इनका जो होरोस्कोप है, होरोस्कोप चार्ट में जो प्लैनेट्स हैं वो मैंने जरूर बताना चाहूँगा। इनके होरोस्कोप में इनको जो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है, अगर मैं जुपिटर की बात करूं तो जुपिटर की स्थिति इनके होरोस्कोप में अच्छी है। और इनका जो क्वेश्चन है, अगर मैं होरोस्कोप की बात करता हूं तो उसमें फिफ्थ भाव को भी रिलेट करता है, क्योंकि जो पांचवा भाव होता है वो लवर्स का रहता है, फिर सेवन्थ भाव जो रहता है वो पार्टनर का रहता है और नाइन्थ भाव भाग्य का। तो इन सभी को कंसिडर करने के बाद ही जो योग है ये देखा जरूर जा सकता है। और उसके बाद जैसे कि जुपिटर है उसकी स्थिति भी देखनी जरूरी है। तो इनके होरोस्कोप में अगर देखा जाए जो चंद्र है उनकी स्थिति इनके होरोस्कोप में काफ़ी अच्छी है और देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की मैरिज जो रहती है वो विलिंगली मैरिज रहती है, जहाँ भी कोई पसंद होता है तो मैरिज वहाँ होती है। लेकिन कई बार ऐसे योग बनते हैं जैसे कि मंगल या राहु के कुछ इनके ऐसे योग बन रहे हैं, ऐसा व्यक्ति इस विषय में कई बार कहीं जिद्दी हट्टी जरूर हो जाता है। वो सोचता है कि ये जो मैच है मेरे लिए अच्छा नहीं है, या ये ऐसा है या वो वैसा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो मैरिज है वो डिले जरूर हो जाती है, जबकि इनके जो मैरिज के योग थे वो लास्ट ईयर भी जो मैरिज के योग थे उस वक्त भी इन्हें कोई ना कोई प्रपोजल रहा होगा मैरिज के विषय में, लेकिन इनकी तरफ से ही ना हुई होगी, क्योंकि मंगल के जब योग ऐसे रहते हैं तो इंसान कहीं ना कहीं मैरिज के विषय में बहुत ज़्यादा जो सोचना है ये शुरू कर देता है। तो मैंने यही कहना चाहूँगा कि जबकि इनके होरोस्कोप में अगर मैं बात करूँ भाग्य स्थान के या मैं बात करूँ जुपिटर के, उसके काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं ऐसे व्यक्ति की, जहाँ भी मैरिज होती है वो जरूर अच्छी रहती है। और मैंने यही कहना चाहूँगा कि इस साल भी इनके जो कुछ प्लैनेट्स चेंज हुए हैं, अगर मैं मंगल की बात करता हूँ या चंद्र की बात करता हूँ या सूर्य बृहस्पति के जो योग बनते हैं वो भी इनके इस साल अच्छे बन रहे हैं, तो ये साल भी इनके जो मैरिज के योग हैं ये अक्टूबर तक इनके कहीं ना कहीं मैरिज के योग जरूर बन रहे हैं। लेकिन हाँ, मैंने ये जरूर कहना चाहूँगा कि इस साल भी जैसे राहु के जिस भाव में योग बन रहे हैं वो अच्छे नहीं है। कई बार ऐसा भी होगा कि इस साल जो इनका मैरिज का प्रपोजल रहेगा वो जबकि इनके लिए अच्छा रहना चाहिए, लेकिन राहु के जब योग ऐसे बनते हैं तो कहीं ना कहीं कोई विघ्न जो है वो डलने के जो योग हैं ये जरूर बनते हैं। तो मैंने ये कहना चाहूँगा कि इस साल इनके जो मैरिज के योग हैं ये अच्छे बन रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जैसे जुपिटर की जो स्थिति है, जो कि पति को भी प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है, उसकी स्थिति इनके होरोस्कोप में अच्छी है ऐसे व्यक्ति की, जहाँ मैरिज होती है घर अच्छा रहता है, और दूसरा जिसके साथ मैरिज होती है उनके साथ जो संबंध है वो अच्छे रहते हैं। तो मेरे कहने का भाव ये है कि इस साल भी इनके जो मैरिज के योग हैं ये जरूर बनते हैं।

0: बहुत ही खूबसूरत भजन, और इसी भजन के साथ हम लोग जगजीत जी से फिर से बातचीत करते हैं। जगजीत जी, अगला हॉरोस्कोप कौन सा पढ़ना है आपको?
1: जी, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ये है 24 नवंबर 1958, और इनका जो क्वेश्चन है ये हेल्थ के विषय में है। तो सबसे पहले इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के मुताबिक इनका जो होरोस्कोप है, इनको जो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है वो मैंने बताना चाहूँगा। इनको जो प्लैनेट भी रिप्रेजेंट करता है वो है चंद्र। चंद्र जिस भाव में है वो जरूर अच्छा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान जहाँ कहीं भी कार्य करता है तो जो चीज़ें ज़िंदगी में नहीं होनी होती तो उस विषय में सोचना शुरू करके ऐसा व्यक्ति स्ट्रेस ले लेता है। और दूसरा, इनके होरोस्कोप में शनि के कुछ ऐसे योग बन रहे हैं कि जहाँ भी इंसान कार्य करता है या जॉब स्टैंडिंग रहती है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि लेग्स में पेन रहना शुरू हो जाता है। अगर मैं बात करूँ तो इनके होरोस्कोप में कोई और दूसरे ऐसे योग नहीं बन रहे हैं कि जो इस तरफ इशारा करेंगे कोई गंभीर बीमारी रहती है। तो ऐसे व्यक्ति की लेग से रिलेटेड जरूर, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान लेजीनेस फील करता है, तो इस तरह के इनके होरोस्कोप में जरूर योग बन रहे हैं। और मैं बात करूं तो इस साल भी जो इनके प्लैनर्स चेंज हुए हैं, जैसे कि राहु के कुछ योग बन रहे हैं या शनि के और सूर्य के जो योग बन रहे हैं, वो इस साल इनके लिए कुछ अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जैसे जन्म के समय इनकी शनि के योग थे तो वही इस बार भी योग बन रहे हैं। तो मैंने यही कहना चाहूँगा कि इस साल नवंबर तक इन्हें अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जहाँ भी ये डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं वो इन्हें जरूर करना चाहिए, क्योंकि शनि की जब ऐसी पोजीशन रहती है तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पाँव पे कहीं ना कहीं चोट लगने के जो योग हैं ये जरूर बनते हैं। तो इस साल की अगर मैं बात करता हूँ तो इस साल इन्हें अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हाँ, कोई ऐसे योग नहीं है कि ऐसे व्यक्ति की जो मैंने बोला कि बहुत गंभीर बीमारी होती है, तो ऐसे कोई योग इनके होरोस्कोप में नहीं बनते हैं।
0: जी जगजीत जी, और हम अपने लिसनर्स को बता दें कि अगर वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे अपने हॉरोस्कोप को रीड करवाना चाहते हैं, तो आपसे संपर्क कर सकते हैं हमारे इस रेडियो के माध्यम से भी, जिसमें हम हर सप्ताह उनके हॉरोस्कोप्स को लेते हैं और वन बाय वन करके कोशिश करते हैं कि सभी हॉरोस्कोप्स को रीड किया जाए। और हॉरोस्कोप को रीड करवाने के लिए हमें उनका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए एंड टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, ताकि हम लोग आपकी पूरी डिटेल जो है जगजीत जी को फॉरवर्ड कर सकें और जगजीत जी उसके अकॉर्डिंगली आपके जो सवालों का है वो जवाब दे सकें। और जगजीत जी से बात करने के लिए जगजीत जी का जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो 02103901133। ईमेल है info@astrologerjagjeet.com। और हमेशा की तरह जगजीत जी, जब भी हम लोग इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, हमारे पास लगता है कि वक्त की कमी होती जाती है। हम लोग बहुत सारी बातें करना चाहते हैं अपने लिसनर्स के साथ, बट क्योंकि वक्त हमें इजाज़त नहीं देता, तो इसी उम्मीद के साथ कि हम अपने आने वाले सप्ताह में अपने लिसनर्स के साथ फिर से जुड़ेंगे, फिर से उनके सवालों के जवाब आपसे मांगेंगे। और तब तक के लिए कोशिश करते हैं कि सब अपनी जगह खैर खैरियत से रहें। जगजीत जी, आपका इस प्रोग्राम में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार जी।

0: radio.org.nz/grahon ka khel. ऑकलैंड काउंसिल का लक्ष्य है कि 2040 तक लैंडफिल में जाने वाले कचरे को जीरो किया जाए। इसका मतलब है रीसाइक्लिंग, कंपोस्टिंग, चीजों को दोबारा इस्तेमाल करना और पुरानी चीजों को नए तरीके से काम में लेना। प्लैनेट एफएम पर सुनिए एक और जीरो वेस्ट टिप। ऑकलैंड में 2010 से हर व्यक्ति के हिसाब से लैंडफिल में जाने वाला कचरा कम हुआ है, लेकिन अभी भी हमें बहुत कुछ करना है। कचरा कम करने का एक आसान तरीका है अपने रीसाइक्लिंग बिन का सही इस्तेमाल करना। सॉफ्ट प्लास्टिक, गार्डन का ग्रीन वेस्ट और घर का नॉर्मल कचरा रीसाइक्लिंग बिन में ना डालिए। अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 के बीच कुल 63,000 टन कचरा लैंडफिल में जाने से बचाया गया। ज्यादा जानकारी के लिए wastenothing.co.nz पर जाइए।
1: Are you a mum with young children? Feeling exhausted, low in sleep, low in mood?
2: There is a place you can go.
1: Try going on safari.
2: Safari multicultural playgroups are for mums and kids aged 0 to 5, especially anyone from a migrant or refugee background. The playgroups are free to attend. There is a pick-up and drop-off service and even free English classes.
1: For more information, email safari@belong.org.nz. That's belong, B-E-L-O-N-G dot O-R-G dot N-Z. As well as being heaps of fun for kids, it's a great way to meet other mums, make friends,
2: and to practice your English.
1: And it's free!
3: We can become one of those rapidly growing groups who have the audacity and courage to believe that we actually can change the world.
4: Technology, entertainment, design, and much more. TED Talks brings you inspiring presentations from speakers across the world. Hear activists, experts, and thought leaders sharing their ideas and stories. Wednesdays at 2 p.m, only live and only on Planet FM.
5: Sushika Dunbar.